0: रेडियो अमन नेटवर्क न्यूज एंड इंफॉर्मेशन स्टेशन।
1: रेडियो अमन नेटवर्क
2: पैगाम अमन है,
3: प्यार की एक दुनिया लेकर
4: मोहब्बत समेट कर

0: करे, आपके चेहरे, गर्दन और हाथों की झुर्रियां खत्म करे और आपकी उम्र को छुपाए। आसमानी फार्मूला ब्यूटी क्रीम में सनब्लॉक की इजाफी खसूसियात मौजूद है जो धूप के मौजूद असरात से आपके चेहरे को रखे महफूज। आसमानी फार्मूला ब्यूटी क्रीम की मुनफरद खुशबू और विटामिन दे आपको ताजगी का एहसास। आसमानी फार्मूला ब्यूटी क्रीम के इस्तेमाल से 5 दिनों में पाए निखरा, शफाफ, बेदाग, गोरा चेहरा। बेहतरीन नतीज के लिए आसमानी फेस वॉश या आसमानी ब्यूटी सोप से चेहरा अच्छी तरह धोकर खुश्क कर लें। आसमानी फार्मूला ब्यूटी क्रीम की थोड़ी सी मिकदार लेकर चेहरे पर लेप करके हल्का सा मसाज करें। सुबह उठकर आसमानी फेस वॉश या आसमानी ब्यूटी सोप से धो लें। आसमानी कॉस्मेटिक्स जो नाम है एतमाद का। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टेक्ट अस 0345923280 0300585848481।
1: आसमानी हर्बल ऑयल 100% ऑर्गेनिक, न्यू हेयर ग्रोथ, खाने के फवायद, जिस्म की इजाफी चर्बी और मोटापे को कम करे, ब्लड प्रेशर और शुगर को नॉर्मल रखे, मर्दाना कमजोरी को दूर करे, हाफजा तेज करे और खून की कमी को पूरा करे, मैदे की गैस, जलन, तेजाबियत, बदहजमी और मैदे का दर्द खत्म करे, बवासीर, खूनी उबादी, कब्ज और मतली में मुफीद है। मालिश के फवायद, सर दर्द, कमर दर्द, पठों का दर्द और जोड़ों के दर्द से पाए निजात, बालों को लंबा, घना और सिया चमकदार बनाए, खुश्की और सिकरी और सर की जिल्द के दानों से निजात दिलाए, बच्चों के चलने में दुश्वारी को खत्म करे, फालिज के मरीजों और हर किस्म के जख्म के लिए भी मुफीद है, जिस्मानी थकावट, जहनी सुकून, हर किस्म की एलर्जी के लिए भी मुफीद है। तरीका इस्तेमाल, सुबह के वक्त निहार मुंह 2 चम्मच 1 कप पानी या दूध में मिलाकर पिए। आसमानी हर्बल ऑयल वाहिद वो तेल है जो अंदरूनी और बैरूनी तकालीफ के लिए यकसा मुफीद है। रابطے के लिए कॉन्टेक्ट अस 0345923।

0: तू हो दे मुबीख परिचय उबासा
1: से चल दी हलका ब्याद से चगे जोड़ी गणी दी रोजाना स्था मसली भी
0: मसली बनी भी चिप बेफोंदो चेहरा ला वख की पाखकल
1: नुमंग सुकु सो होता सुन द बाजार नख चेहरा उड़म
0: दाख चाय बदास वीनो जनस कम नोरी दा चाय
1: बस बस के हल इस दे
2: ये है कमर चाय का पाकिस्तान
3: दा चल क बसम दे औ क पगर दे ओ हल ये कमर दे कमर चाय द पाकिस्तान नंबर वन चाय रंग बे मिसाला खंद ला जवाबा कमर चाय द पाकिस्तान मशहूर चाय दा कुमचे द पंजाब सिंध बलूचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा आजाद कश्मीर और गिलगित बल्दिस्तान पहर कोर और पहर होटल के इस्तेमाल की
0: नेमनी द्वसवजल वर्तमान हम द कमर चाय वेली दी हो पलाला बई मनी सो दे लाची और द बाजार न बई द कमर चाय पजे नूर बे खंद चेहरा प महकड़ी वी
1: दाजल ब कमर चेहरा ओडम खुदा बरा त चरत मिलाउशी
3: दा बताता पो बटाग्राम कुजबांडा मेरा बांडीगो चतरप्लेन ताकोट करग और बना बाजारों ने लावा द बटाग्राम और अलाई पर हर गट और उड़ू की जनरल स्टोर की मिलावेगी पो बटाग्राम की द पीएसओ पंप सर नजदीक द सलीम एंड ब्रदर्स दुकान नहम अखस्तले शई द कमर चाय पाड़ा नूर मालूमात पदी नंबरों तरला सकवले शई 0320 900 920 बल नंबर दे 0314 92 490 83
4: जहाँ मीठी बोलियाँ बोली जाए
2: वहीं बनता है कमर चाय का खूबसूरत पाकिस्तान कमर चाय।

0: रेडियो अमन नेटवर्क,
1: पैगाम अमन है,
2: प्यार की एक दुनिया लेकर,
3: मोहब्बत समेट कर
4: रेडियो अमन आया आपकी जिंदगी में।
1: तो सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क,
4: रेडियो अमन नेटवर्क।

0: रेडियो अमन नेटवर्क,
1: पैगाम अमन है,
2: प्यार की एक दुनिया लेकर,
3: मोहब्बत समेट कर
4: रेडियो अमन आया आपकी जिंदगी में।
3: तो सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क।

0: शुक्रिया। आपने रेडियो अमन FM 88.4 बटग्राम ट्यून किया।
1: रेडियो अमन, रेडियो अमन, रेडियो अमन जज्बा है मोहब्बतें समेटने का, मोहब्बतें समेटने का, मालूमात की एक नई दुनिया बनाने का, एक नई दुनिया बनाने का। ये जज्बा है आपकी आवाज बनने का, जज्बा है आपको बाखबर रखने का, जज्बा है आपको बाखबर रखने का, एक अज्म अपनों को पास लाने का, बिछड़ों को फिर से मिलाने का, एक जज्बा आपको खुश रखने का, आपके चेहरों पर मुस्कुराहटें लाने का। रेडियो अमन 88.4 खुश रहने का जज्बा।

0: शुक्रिया, आपने रेडियो अमन FM 88.4 बटग्राम ट्यून किया।
1: रेडियो अमन जज्बा है मोहब्बतें समेटने का, मालूमात की एक नई दुनिया बनाने का, ये जज्बा है आपकी आवाज बनने का, जज्बा है आपको बाखबर रखने का, एक अज्म अपनों को पास लाने का, बिछड़ों को फिर से मिलाने का, एक जज्बा आपको खुश रखने का, आपके चेहरों पर मुस्कुराहटें लाने का। रेडियो अमन 88.4 खुश रहने का जज्बा।
2: रेडियो अमन नेटवर्क,
3: पैगाम अमन है,
4: प्यार की एक दुनिया लेकर,
5: मोहब्बत समेट कर।
6: रेडियो अमन आया आपकी जिंदगी में,
5: तो सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क।
6: रेडियो अमन नेटवर्क।

0: امن د تیرو مشال لې امن زمنګ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام
1: शुक्रिया आपने रेडियो अमन FM 88.4 बटग्राम ट्यून किया।
2: रेडियो अमन, रेडियो अमन, रेडियो अमन जज्बा है मोहब्बतें समेटने का, मोहब्बतें समेटने का, मालूमात की एक नई दुनिया बनाने का, एक नई दुनिया बनाने, ये जज्बा है आपकी आवाज बनने का, जज्बा है आपको बाखबर रखने का, जज्बा है आपको बाखबर रखने का, एक अज्म अपनों को पास लाने का, बिछड़ों को फिर से मिलाने का, एक जज्बा आपको खुश रखने का, आपके चेहरों पर मुस्कुराहटें लाने का। रेडियो अमन 88.4 खुश रहने का जज्बा, खुश रहने का जज्बा। आप सुन रहे हैं रेडियो अमन 88.4 बटग्राम की इस्लामी नशरियात, इस्लामी नशरियात। हमारे साथ रहिएगा, हमारे साथ रहिएगा।
0: گرانو ریدن کو دا امن ریڈیو ایف ایم 88.4 بٹاگرام دے دا وقتاسو زمونگا اسلامی نشریات آوری

आईसीसी वेमेंस टी20 वर्ल्ड कप द्वैम सेमीफाइनल के इंग्लैंड फाइनल तक क्वालिफाई कर जनूबी अफ्रीका तय सलवे हतरन सर शिकस तौर कर दी। द आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप द्वैम सेमीफाइनल जनूबी अफ्रीका वेमेन टीम और इंग्लैंड वेमेन टीम पमस किलो भी दली दी चे इंग्लैंड वेमेन्स टीम जनूबी अफ्रीके वेमेन्स टीम तक सलवे हतरन सर शिकस तौर कर दी। द यूसल अवियारन खदफ पता कुप के जनूबी अफ्रीके वेमेन्स टीम यूसल नहविश तरन जुड़वलो बांधी आउट शिवे दी। इंग्लैंड वेमेन्स टीम मुकर्रा शल और के पिंजा विकेटों पर नुकसान यूसल नहश पितर जोड़ कड़ू। द जनूबी अफ्रीके वेमेन्स टीम यूसल अवियारन खदफ पता कुप के मुकर्रा और के यूसल नहविश तरन जोड़ कड़ी दी। अवले बल्फा पीसीबी जद के जदीद बैन अलावा क्रिकेट स्टेडियम जुड़वलो ऐलान कर दे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सऊदी अरब के क्रिकेट फरोग लपारा अगट कदम उचित कर दे जदा के जदीद बैन अलावा मयार क्रिकेट स्टेडियम जुड़वलो ऐलान कर दे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और सऊदी अरब क्रिकेट फेडरेशन पमस के क्रिकेट फरोग इंफ्रास्ट्रक्चर तरक्की और बाहमी तउन लपारा मफाहमती यादाश्त बंदे दस्तहत शिविदी। मुआहदे बांधे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चेयरमैन मोहसिन नकवी और सऊदी अरब क्रिकेट फेडरेशन चेयरमैन दस्तहत करी दी। द नवे मुआहदे लांदे बाजद के जदीद क्रिकेट स्टेडियम जुड़ोवली शी। ओ सौरु द मौसम हाल दो मौसमियात महकमे तर माह तेरह सलविश घंटों पर दौरान करक लकी मरवत बनु और टांग खोश ज्यादातर इलाकों की बरान शविदी जिन इलाकों की पासमान खाल खाल उलेज हुए। दो मौसमियात महकमे लखवाविली शविदी चेरा तुल को सलविश घंटों पर दौरान करक लकी मरवत बनु और टांग खोश इलाकों के द बरान वरे दो इम्कान दे जिन इलाकों की बासमान खाल खाल उलेज हुई। दो मौसमियात महकमे तर माह करक लकी मरवत बनु और टांग खोश सिम के नंजियात नंजियात दर्जा हरत सलोर दस डिग्री सेंटीग्रेड और कम न कम पगिस डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड करी शवे और पहावा की दनमई तनासो पिंजल फीसद हवा रफ्तार द्रे किलोमीटर यो घंटा रिकॉर्ड करी शवे। अवली दूसरा करक लकी मरवत बनो और टांग खोश सिम की बनवर सबा सहर दुलस मिनट दपास पिंज बजे सिरोही और महामत विश मिनट दपास वह बजे बप्रियोजी। नऊ द रेडियो अमन अठसी अश्वर्य चार नेटवर्क हम खबरों दनोर हम खबरों नवरी दलो दपार रेडियो अमन अठसी अश्वर्य चार नेटवर्क सरोसाई उस न्यूज टीम सरा मात्र आकड़े इजाजत दलू अल्लाह पामान।

0: Radio Ama Network, News and Information Station.
1: Radio Ama Network.
2: Pyaam aman hai.
3: Pyaar ki ek duniya lekar.
4: Mohabbat samet kar.
5: सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क
6: रेडियो अमन नेटवर्क।

मेरी अधूरी कहानी भी आपसे क्या नाम दस लफ्ज में चिकन जिन्हें आपसे जुड़ा बोले सही नाम तो असलम मिसाल रगड़ ले अभी खुदा से जुड़ा बोले रंग बस आसो कॉल्स दगा रंग सासो मैसेजेस अदा बहुम दे प्रोग्राम इस तरह जुड़ेगी जिनाब चे प्रोग्राम के बा फर्स्ट कॉलर चिकम दे जिनाब अगबा ऑटोमेटिकली क्वालिफाई के सही नाम चिकम फर्स्ट कॉलर देखना अगबा ऑटोमेटिकली क्वालिफाई के सुपर सिक्स था प्रोग्राम चिकम ब्यामुंगा बुजू आखिरी लम्हा तो था कम जखरा नहीं कॉलर ब्यागो ऑटोमेटिकली क्वालिफाई के अगर ना बस मतलब दे तपूस कहो जरूरत न राजी सही दे जिनाब औदे सर सर जिनाब او دیس طرح ترکم چیز باقیہ سلور کسان دے اگر بس الیکشن کی گئی دا ٹیم سبر لکھو دا ٹیم زیر لکھو صحیح دیکھنا اینی و جناب گورو چچا جالا سمجھ راگلے بھی چچا جالا سمجھ راگلے دے

0: ठीक है जिशान, 10 गेम की साख ले
1: जी।
0: कहानी जुड़ गए पिंजू लफ्ज नु, शाबाश। चिपके से सबक प्रूतवी,
1: आई लव यू नॉट
0: बाय, आई लव यू हाय, जबरदस्त
2: बंगड़ो शोर
0: जबरदस्त। देखो 10 पॉइंट तो मिला, मैंने

0: लगता है हुक्म करना भाई रब का बगैर गुरु प्लान में सुख दे कम से रहे। अस्सलाम वालेकुम जी।
1: वालेकुम सलाम, किन हाल लीजिए?
0: खैरियत जी, सुख दे कम से ना
1: बाड़िया शेरजादा।
0: शेरजादा से प्रोग्राम के हरकल है स्टडी में शिप खैराले दर तमायो
1: खादो से खादो।
0: शेरजादा से ताजु खिया जोन मुखरा वानी जिंदगी मुखदा
1: शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह
0: जी। शेर टीम से बड़ा टीम से
1: जेर
0: जी। आप इन सो लफ्जों कहानी
1: मैं अभी ड्यूटी पर हूँ।
0: मैं
1: अभी ड्यूटी पर हूँ।
0: हाँ, मैं आप अभी ड्यूटी पर हूँ। बिल्कुल शेर ज्यादा सही दे रहे मंदिर खुशहाल हो सके। पहला हाफिज हाँ हाँ जी भाई दरबार का बहुत गुरु बलायन मंदिर। अस्सलाम वालेकुम जी। खैरियत जी दस सुखी अमल सही दे चके सर ना
2: मार्केट
0: वहां गर्मी की ना जहाँ मैं वहाँ मार्केट गर्म ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता
2: क्या
0: जी। अमल
2: आवाज जो तम जो करे रे माशाल्लाह।
0: हाँ आवाज गले चकता क्या ना उसको मैं आवाज भी क्लियर दे मकिन तो गेम ना खराब शी दे आवाज दिलासा।
2: बिल्कुल यो लोग अभी अबल मजा ही दे रहे भी अबल
0: नो बस भी अखुबा हुआ क्या ना जी। अमल सही था सोपर टीम शेयर की है नो गेम किसा करे क्या ना अंपायरिंग कब है
2: सर? अंपायरिंग बहुत बस ये उठे के पकिमंगो वो खैर दे
0: जी वो है खुशा सुनामा बस नहीं लिखम सही दम
2: बिल्कुल मैं लिखा हूँ गेम पसंद दे पता
0: कना उगुली कमा तो सिंगर तो सो है
2: बस मंदा पशुआ गेम पसंद दे गुला।
0: गेम खो आसान दे गुला वाह जबरदस्त दिल कमाली मरा मेरा मजे को मजे तो खुशहाल रहता सो के बाल हाफिज।

0: बिल्कुल जनाब, दस पर बस गिनती में मां अगर तो के जैसे चक आलू लगे ले अब लकी कलर भी सही था। चले जी, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 एंड गो। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम।
0: जनाब अली से कम से ना
1: महक
0: जी महक बिल्कुल तसो क्वालिफाई चिकन मदा का बिल्कुल शिविर दे रहा मंदने को खुशाला तो से ओके भाई अल्लाह हाफिज़। टीम से बाकी राजे के ना
1: जी
0: ओके भाई अल्लाह हाफिज़ जी।

0: ये मैं जनाब अजू पर मलिक हालत रहता 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 एंड गो जी। अस्सलाम वालेकुम। जी इजमा बख्याल सईद जी बिल्कुल सही है। डेरे मैंने ना ओके भाई अल्लाह कभी आप उससे कपड़े गुनो बिल्कुल जनाब यो काल के बला खलो गुरु इस तरह बलान मैंने बसुक हुई 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 एंड गो जी। अस्सलाम वालेकुम।
1: हेलो अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम। शेरजादा आई थिंक
1: शेरजादा जी
0: गिजबोड़े वाला डेरे से तमन्ना ओके बल्ला हाफिज जी हम उसे के विनर रहा जनाब हाँ जी नर खा के पाते हैं अब आगे क्या मम मड़ा खा आगे क्या मम वो सदा सुबह टीम जबर लगा के मुखबर होगु आए के मुझसे के आयान दे दिशान दे वकास दे दर यो खुर गई वा सही था अस तक दिला मौका वर के सही था देखिए बम दे का साला कसले की गई चाचे दे का जुला के दिल ठीक था और हम भी दे का सही था टीम जबर वाला मौका के नुखल का काल मौका वैसे ही ना नुखल का काल बिल्कुल मौका मड़ा सिर्फ तक दूला मौका वर्ग के ना खास देखो ये बात की तक दूला मौका वर्ग से तो नुखल का काल मौका भाई चले जी 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 एंड गो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब वकास डेरा मंदना खुशहाल हो तो सो के भाई अल्लाह हाफिज जी बिल्कुल हाँ हाँ जी कल बुला खलो टीम जबर लखा चले जी दादा दिल से इनसे भी खान दादा से गलत नहीं वहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10 एंड गो। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम कौन राम चले हाँ जी क्या कर चुके थे जनाब बगैर तो गिनते भाई खदा दिल बगैर तो गिनते भाई बैठ रहे कॉल तरह जुगुर कर उनकी सुख दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। जनाब सुख जी खुर गए डेरा मंदना ओके बाला हाफिज जी बिल्कुल जनाब सर वो खुर गए हाँ जनाब उसे केवी ने रख ले टीम सफर लखवा जी कम रख ले दी ये उदे वकास ये उदे मेह खुर गई और बोले द बोले खुर जी कम उदे काल करो यकीन जो अगे दा दगा रंगे द टीम सेर लखवा जी मुसे कम दी ये उदे अबू मोहम्मद ये उदे सईद अयोधी शेर सादा हाँ हाँ जी जूनियर वर्सेस सीनियर